0: नसीम अली साहब की आवाज थी, बर्बाद करके हमको वो मुस्कुरा रहे हैं, हम जिनको याद करके आंसू बहा रहे हैं। शी डिस्ट्रॉयड मी कंप्लीटली एंड नाउ शी इज स्माइलिंग। हम जिनको याद करके आंसू, एंड द पर्सन दैट आई एम थिंकिंग अबाउट एंड ऑफ कोर्स शेडिंग टीयर्स, बट शी इज डिस्ट्रॉयड मी एंड स्माइलिंग टू हरसेल्फ। बर्बाद करके हमको वो मुस्कुरा रहे हैं, हम जिनको याद करके आंसू बहा रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, नसीम अली साहब की आवाज़ थी, बड़ी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इस गजल को पेश की है। थैंक यू सो मच दे सबीता सुखदेव फॉर ट्यूनिंग इन, देन आवर रेगुलर्स एज वेल, कानगी वसंती एंड ऑफ कोर्स इंद्रानी, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव राज एंड सरिता ऑफ Reet Rivera is also tuned in. Thank you guys. Tina Naik, one of our regulars from Shellcross. Saifuddin Jafar Sahab, yes, Cape Town ke rehne wale. Shukriya Bhaijan, ye aapki mohabbat hai ki aap hamare program ko samaat farma rahe hain. Shukriya Saifuddin Jafar Sahab. Muhammad Asad also listening through from Reservoir Hills. And then our China man, our international listener Riza Sahab. Yes, it's about 1 a.m. in the morning there, but of course he gets up to listen to the results. Thank you so much, Riza Sahab. And also he wants to say, you know, he's wishing John and Auntie Cherry well. Yes, John and Auntie Cherry. Riza, our Chinaman, wishes you guys well as well. To lijiye ab program ko aage badhate hain. Aur jahan tak, you know, I'm sure that you are up to the stage enjoying the music.
1: You are listening to Goldasta.
0: Let's listen to another singer, marhum, the late Pankaj Das Sahab.